0: Subscribe.
1: Subscribe.
2: Subscribe.
0: Subscribe, Saruka.
2: Subscribe.
0: कुछ ना कहो बस सब्सक्राइब
1: कर दो यार सब्सक्राइब
0: प्लीज प्लीज
3: बोलो ना प्लीज सब्सक्राइब प्लीज कर
2: सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुछ ना
0: कहो कुछ भी ना
2: सब्सक्राइब
4: ओ रंग रे
5: Me, Vindhya Prasad, Monday to Friday, 9 a.m. for Sanskar, a refreshing blend of music, virtues and values, culture and tradition, positive and inspirational thinking. Sanskar, brought to you on 89.1 FM.